0: विस्तार है, उनको सहाय मिलनी चाहिए, ताकि पूरे के पूरे घर बर्बाद हो गए, किसी के पास कुछ नहीं बचा है।
1: Activists are asking the salt workers to document their losses so they can inform the authorities.
2: Now, historically, this is a community that has not received a lot of help from the Indian government. We're going to track over the next few months whether that changes and to try and understand why this community that produces an essential commodity is so marginalized.
1: The Gujarat government says it provides welfare services to the community, including mobile health vans, often the only medical care available to families living deep inside the desert. Today, we've been given access to ride with one of them.
3: Hello, sir. How are you?
1: But there's a change of plans. Instead of traveling to storm-affected Agaria settlements, they are being diverted to a temple event elsewhere in the desert.
4: जो बाकी गाड़ी है ना जिंजवाड़ा, वो भी एक रानी है।
3: हाँ।
4: वो थोड़ा अभी डिसफंक्शनल है, इसलिए हमारी गाड़ी उधर पोस्ट हुई।
3: तो आप जिन फैमिलीज को सर्व करते हो अगरिया फैमिलीज को, अब उनको मदद नहीं मिलेगी आपसे?
4: वो मैम, वो क्या होता है, वो पीएचसी तक जा सकते हैं, ऐसा ऐसा इन्होंने कहना ऊपर से।
1: The staff tell us diversions like this are common.
5: मैं आपको बता था, वो एक दो महीने में 10-15 ऑर्डर है हमारे एक ही वाहन के। ये वैन है स्पेशल अगरियाओं के लिए, तो खाली नाम अगरियाओं के लिए। इसको किसी भी, किसी एमएलए का फंक्शन हुआ, किसी का भी गवर्नमेंट ने किसी, ये ध्वज वंदन होता है राष्ट्रीय, कुछ भी हो इसमें उसका ऑर्डर कर देते हैं। जो इसके लिए है उसको लाभ कुछ नहीं है।
1: The Gujarat government says it has assigned 12 mobile health units to serve Agarias through the salt season. As we cross the desert, a salt worker flags down the van asking for help. But just as the doctor gets out to assist, he receives an urgent phone call.
4: राठौर चारों मती मैं किधर तू?
6: हेलो
4: पेचे हम आज रुके हमने बच्चे हमें पेशेंट जो था ना हमने रिकॉर्ड करूं कितने ऊपर रास्ता में अच्छे
6: वो रोक रहे थे पर अब हम ऊपर से फोन आया कि आपको उधर पहुंचना ही पड़ेगा। नहीं फटाफट चला दो, अब क्या है, रोकता नहीं, फटाफट चला दो।
1: When we arrive at the temple, only a small number of patients seek treatment. None appear to be salt workers. Even organizers here acknowledge that there's a severe shortage of services for Agarias.
7: आ प्रसंग पति या पची रणमा अगरियावनी आ लोको सेवा करे इमा अम्मे वांदो नथी, पण अमारी एक एवी रजूआत है कि जे जिंजुवाड़ा गामनी जे गाड़ी फाड़वेली है ए छेले 6 महीना थी अमदावाद में रिपेरिंग पड़ी है अने एना कारणे अगरियानो जे सुविधा मळवी जोए मळती नथी।
1: As we leave, the van's driver Chintan pulls us aside.
5: मैं आया 17 साल हुआ, स्टाफ पूरा कभी भरा ही नहीं। आप देखते हो तो अंदर से रोना आता है कि ऐसे आदमी इतने हमारे देश के लिए, हमारे लिए इतना मीठा, जो खाने में सबसे ज्यादा क्या चीज चाहिए, मीठू, मीठा नहीं होगा तो खाने में मजा नहीं आएगी। वो हमारे लिए इतना करता है तो हम उसके लिए कुछ कर नहीं पाते, मतलब हमारे हाथ में नहीं है।
1: To find out how widespread this problem is, we travel about 100 kilometers to Gujarat's west coast, where thousands more workers harvest salt. At a health clinic in the region, we join Dr. Prajapati.
8: आपको वहाँ पे जाके outreach करना है, यूनिटी के साथ काम करना है, ठीक है? चलो।
1: Today, Dr. Prajapati's team is vaccinating children living in the salt pans. Their first patient is this 10-month-old baby.
9: बस, thank you.
8: तो ये केस में क्या, इनका 9 महीने तक यहाँ पे रहते हैं, तो हम जहाँ जब भी आते हैं तो इनको हम सर्विस भी दे पाते हैं, उनका हेल्थ एजुकेशन भी कर सकते हैं और इनको जो भी प्रॉब्लम है वो हमें बता सकते हैं।
1: At another settlement, they treat a man with a severe skin infection.
10: तो तातर क्यों है, अक्रोज क्यों है?
8: वो खंजवाड़ा है तुमने?
10: खंजवाड़ा है ना,
8: क्या क्या चाहिए? बेहाथ मचे?
10: बात में?
8: बताओ।
10: મટી જાન થાય, મટી જાન થાય,
8: શું કામ કરો તમે? અગર મીઠામાં જીવન થાય કોજે
10: સંબંધ નથી, મીઠો ધંધો અમારે।
1: Doctors say prolonged exposure to salt can leave workers with chronic skin infections, cracks, burns and painful lesions.
8: હવે તમને દવા આપું, તમે રેગ્યુલર કરજો, એનાથી ફરક ના પડે તો એકવાર પીએચસી આવજો, પીએચસી મીઠી લો કાં તો પછી ચામડીના ડોક્ટરને એકવાર બતાવવું પડશે।

0: Other common complaints include chronic pain, deteriorating eyesight, and reproductive health complications. But the doctor says there's only so much he can do.
1: हमारे पास स्टाफ की शॉर्टेज है नहीं, रिसोर्सेज कम बढ़ रहे हैं, वो थोड़ा इश्यू रहता है, हाँ, ऑलमोस्ट हर जगह पे इश्यू है।
0: Shortly after the storm, we visit Kishan's family again. His son Rudra is preparing for an important exam.
2: आपका सबसे अच्छा वाला सब्जेक्ट विषय कौन सा है?
3: गणित।
2: जब आप रण में होते हो,
3: हाँ।
2: पढ़ाई करने में मुश्किल होती है?
3: हाँ, यहाँ लाइट नहीं होती, इसलिए दीवे से करना पड़ता है, पर पवन लगता है तो दीवा भी उलझ जाता है इसलिए।
0: Watching Rudra study brings back difficult memories for Kishan.
4: दुख बहुत होता है कि अगर आज मैं मेरे बाबा मेरे को पढ़ाते लिखाते तो मैं ये मेहनत नहीं करता, और मेहनत करना हर इंसान को ज़रूरी होता है, मेहनत करने से कोई वो नहीं है, लेकिन जो पढ़ाए लिखे होते हैं उनको मेहनत तो करनी पड़ती है लेकिन कलम से होता है, और ये मेहनत नहीं है, ये मजदूरी है।
3: पगला ना एमना तरफ बढ़िया।
0: द नेक्स्ट मॉर्निंग Rudra gets ready for school. It's only a short walk away from the family's hut.
5: Bye.
0: This desert was declared a wildlife sanctuary in the 1970s to protect the endangered Indian wild ass. That makes it difficult to build permanent infrastructure here. So, the Gujarat government has set up about 2 dozen bus schools for Agaria children.
6: Dharan 6-8 nu Hindi nu paper che. પ્રશ્નોના જવાબ સારી રીતે લખીશું.
0: બટ એડવોકેસી ગ્રુપ્સ હેવ રિપીટેડલી વોર્ન્ડ ધ સ્કૂલ્સ સફર ફ્રોમ ટીચર શોર્ટેજીસ.
3: વહાં અલગ અલગ સાહેબ હોતે હૈ જો 1-8 તોરો કો બનાતે ઓર વહાં અચ્છે સે સમજાયા જાતા ઓર દર એક વિષય મે ઓર યહાં ઘડીએ ઓર એસા આલતે વિષય પે નહી આલતે.
0: દેર આર નો ડેઝર્ટ સ્કૂલ્સ ફોર ઓલ્ડર ચિલ્ડ્રન.
6: महसूस होता है कि ये इन बच्चों में भी कुछ आईक्यू पावर अच्छा होता है कुछ बच्चों में, लेकिन उनको पूरी तरह से गाइडेंस न मिलने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पास.
0: Far from the bus schools and salt fields, some traders have built large fortunes from the salt harvested by the Agarias.
7: जब पाटिया हार छाप करता नहीं हो जो पाटिया हमारे एकदम चोखा छाओ जी एक तो उड़न है असल.
8: और ये सब बैग कहाँ जा रहे हैं सर?
9: ये यूपी में एमपी में.
8: ये सब आपका है?
9: सब यहाँ से ये दीवार से वहाँ लास्ट तक मेरा है, करीब 10,000 चौरस मीटर की जगह है.
0: हिंगोर भाई इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडर्स इन द एरिया. ही पेज एडवांसेस टू एज मेनी एज 100 फैमिलीज ईच सीजन. फॉर हिम द स्टॉर्म हैजंट बीन एंटायरली बैड फॉर बिजनेस.
9: नमक का प्रोडक्शन कम होता है तो डिमांड ज़्यादा रहती है, तो आज के समय में डिमांड अच्छी है, पूरा एरिया ढेर बन जाएगा, करीब 17-18 लाख टन नमक यहाँ बनता है.
0: लास्ट ईयर हिंगोर भाई एंड अदर ट्रेडर्स ओपन्ड अ प्रोसेसिंग प्लांट टू मीट राइजिंग डिमांड फॉर पैकेज्ड सॉल्ट. टुडे ही इज इंस्पेक्टिंग द प्रोडक्शन लाइन विद हिज फैक्ट्री मैनेजर.
10: ये इस तरीके से अपना 1-1 किलो पैकिंग होता है. इन 13 मशीनों में पर मिनट 60 पाउच की कैपेसिटी रहती है मैक्सिमम.
0: Most agarias never sell directly to the companies whose brands appear on supermarket shelves. Instead, their salt typically passes through middlemen.
10: अभी तो अपने पास मान लो एक ब्रांड है, कभी 10 ब्रांड हो तो सबके इसके भी आपके जो दोनों मिलेगा.
0: Workers say they are often paid less than half a cent for each kilogram of salt they harvest by hand. Once packaged, the same salt can sell for up to 35 cents a kilogram. But when asked whether rising profits mean traders should pay agarias more, Hingor Bhai says the responsibility lies elsewhere.
9: Jo agaria kalyankari yojana ka fund hai wo sahi dhang se sarkari manage nahi karti. Yadi sarkar manage karti to unko shikshan ka aarogya ka unke bacche ke jo bhi suvidha hai wo zyada de sakte hai.
0: Back in the desert, families like Kishan's are still waiting for help.
4: चलो हवे आपणे दादे जईए, बरोबर? अहींया मीटिंग राखेली है, सबसे मुश्किल जिंदगी आगरिया की है यहाँ गुजरात के अंदर, लेकिन सरकार कुछ करती नहीं है, यही कुछ पता नहीं चलता। हर बार ऐसा, हर साल ऐसा होता है, लेकिन आज तक सरकार कुछ करती नहीं है। अब इस बार भी मीटिंग है, अब मीटिंग में हम जा रहे हैं, अब देखते हैं कि इस बार सरकार कुछ करती है या नहीं करती।
5: आगरिया भयो केवा मनात करता मजूरी अने रण वचारे गुजारो करता ए आवो मेघ रे ए राजा नो थयो टांडो अरे रे कैक तो नो से अमारा यासु।
0: The meeting has been organized by a group advocating for Agaria rights. Harinesh Pandya and his team have traveled from Ahmedabad, Gujarat's largest city.
11: अगर दूसरे कोई traditional occupation में ऐसा disaster आता तो इस हफ्ते एक हफ्ते के अंदर 15-20 लोगों ने सुसाइड कर लिया हो, लेकिन इनका जो जिगर है, ये मुसीबतों को झेलने की जो ताकत इनकी है कम्युनिटी की, अगरिया कम्युनिटी की, पूरे रण के अंदर देखे तो करीब करीब 80 करोड़ के आसपास
2: ह्यूज लॉस
11: है। और अगर ठीक से पूरा, अगर हमें लगता है, हमारा हम जो देखते हैं तो लगता है कि 100-120 करोड़ के आसपास नुकसान।
0: द ग्रुप इज कॉलिंग फॉर अ डिजास्टर रिलीफ पॉलिसी सिमिलर टू द कॉम्पेंसेशन स्कीम्स अवेलेबल टू इंडियन फार्मर्स अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वेदर।
11: एक बात चोखी स्पष्ट करी કે રેવન્યુ વિભાગ અને ગુજરાતનું જે આ ડિઝાસ્ટર મિટિગેશનનો જે વિભાગ છે, હોનારત સામે રાહત કરવાનો હજી એકાદ વર્ષ એમાં જશે આખી પ્રક્રિયામાં।
0: ફ્યુ સિનિયર ઓફિશિયલ્સ હેવ કમ ટુ ધ મીટિંગ, નન આર ફ્રોમ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ રિસ્પોન્સિબલ ફોર ડિઝાસ્ટર રિલીફ।
12: તમારા મહેનતથી મિત્રો તૈયાર થાય છે, તમે જે મહેનત કરો છો બરોબર, એમાં અમે સહભાગી થઈએ।
0: એન્ડ ધોઝ હુ આર હિયર ઓફર નો કોન્ક્રીટ હેલ્પ।
13: તમે જે મજૂરી કરો ને એ તમારા બાળક ના કરે, એટલા માટે હવે તો મજૂરી કરીએ તો અમે એજ્યુકેશન જોશે।
0: કિશન ઓન્લી ગેટ્સ ધ ચાન્સ ટુ સ્પીક અવર્સ લેટર, બાય ધેન સેવરલ ઓફિશિયલ્સ હેવ ઓલરેડી લેફ્ટ।
14: જે મારું એકનું જ નહીં પણ આખા રણની અંદર તમામ આગોરિયાના ઘર પરિવાર બધું જ રણપણ થઈ ગયું, છાપરા ઉડી ગયા, ટાંકીઓ ફૂટી ગઈ, ક્રૂડના બેલર ઉડી ગયા, સોલર પ્લાન્ટ તૂટી ગયો, મારા મીઠા વારેલા પણ નથી, મીઠા પાટાની અંદર જ છે।
0: The scale of their losses is clear.
5: પણ સરકાર ને કોઈ જઈ કે જો અમારી વેદના અરે રે કઈક તો લો છે અમારા આંસુ। ગુજરાતી હોતા હે લેકિન મેને સબ કે લિયે આંસુ બહાયા, સબકો દુખ હુઆ હે ઇતના।
0: Multiple government authorities refused our requests for an interview. A junior official did not say if the salt workers would receive support. So, we're heading to Ahmedabad to meet the president of India's Salt Manufacturers Association. Bharat Rawal represents some of the country's biggest salt producers. Despite growing concerns over erratic weather, he says the industry's overall outlook remains strong.
15: During 2024-25, we achieved 49 million ton of production, which is more than US salt production.
0: Rawal dismisses the idea that the salt industry itself should do more to help workers.
15: Hamara to business hai aur CSR activity hamara hai, ye development ka, agariya ka khyal rakhna, jaise gumboot dena, goggles dena.
16: Fir bhi koi pehne hue bahut kam
15: milte hain. Wo ek myth hai कि अगर मैं जूते पहनूंगा तो मेरी स्पीड कम आएगी, लेकिन इनकी तो जिम्मेदारी है सरकार की, वो पल्लू झाड़ रहे हैं उनको पूछो।
0: रावल इज आल्सो अ मेंबर ऑफ गुजरात्स सॉल्ट एम्पावर्ड कमिटी, अ गवर्नमेंट बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर अगरिया वेलफेयर अमंग अदर इश्यूज। ही बिलीव्स द गवर्नमेंट हैज निग्लेक्टेड वर्कर्स।
15: खाली फंडिंग से नहीं होता है ना, 40 करोड़ दे दिया लेकिन एक भी मीटिंग नहीं बुलाओ तो कैसा पैसा खर्च होगा। और अगर सीधे शब्दों में बोला जाए, आज के दिन में जो माई बाप बोलते हैं ना सरकार में, इस इंडस्ट्री का माई बाप ही नहीं रहा कोई।
0: गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रिव्यूड बाय 101 ईस्ट शो द कमिटी हैज ओनली मेट ट्वाइस सिंस 2020। द गवर्नमेंट्स ओन ऑडिटर्स रेकमेंडेड रेगुलर रिव्यूज to ensure welfare schemes actually reach Agaria families.